जय कहने वाले तेरे रहस्यमय वड्डे मेरे साहिबा गहरु गंभीरा गुण गहीरा कोई न जाना तेरा किता के बड़चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुरु गुरहाई कह न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाई आऊ सिद्धाओ पुरखा किया वड्याई आ तुद गुण सिद्धि करण पाईआ कर मिलै नाही ठाकुर हाईआ आखण वाल ना क्या विचारा सिफती भरे तेरी भंडारा।

तेरा अंत न पार भरिया रागा सा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम पारा सब त्यावै है तुझ जीव है सच्चे सिर जन हारा सब जीत माड़े जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संतोह जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंतन चारा तू घट घट अंतर सरमन अंतर जी हर एको पुरख समाना

तो सबै तुमका बहो हमरे दुष्ट सबै तुमका बहो आप हाँस दर मोह बचा बहो सुखी बसाए मोरो परिवार सेवक सिख सबै करतारा मोर छाव निज कर दिए सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की राह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अगण त्याऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हादर मुझे अबरिया मरण काल का त्रास न मरिया हो जोसदा हमारी पछाऊ श्री अस तो जिजो कर हो रक्षा राख ले हो महराखण हारे साहिब सन सहाय प्यारे दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चातर दास कंता काल पाए ब्रह्मा मबतराऊ काल पाए शिव जी अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशाऊ सकल काल का की आत्मासा जवन का

तू जछन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी सक प्रजा जिने आप सवारी। शिव कन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मो बंद कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असूला सापर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक ही पीर पछाना घट घट के पट पट की जाना। जबद कर कर करतारा प्रजा धर तब दे हो पारा। जब कर कर तो हो कब हो तुम मैं मिलत देह धर सब हो। जिते बदन श्रेष्ठ सब धर।

छान छब सका न कोई। एक बार जिंत मैं संभारा ओ काल पास ताहू बारा। जिन और नाम तिहारू कहा दर्द दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दैले हो बारी। सर्व ठौर मोहो सहाई दुष्ट दुख ते लेहु बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुब्राता।

दास जान दु भरो हमरे सब बैरियन संघारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बोर करो कविता विदनाना कृष्ण जत्था मत चित्र छारू चूक होए कवले हो सुधारू कभी बाचो दोहरा

आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया बधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावण आईया शब्द तां गावो हरि के राम मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार ओह कर तेरा कार्य सब सवारना सबना गल

जहां प्रयात शांदे नमस्तल प्रणाम समस्तल प्रणासी अभ्यंजर नाम समस्तल नासी में कामन विपूते समस्तल स्वरूपे को काम प्रणासी स्वधर्म विपूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिमल कुलिंदा समस्तल वासी अजाय विपूते गजाय विग्नि में हरियम करियम करिमल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सृजम प्रभु शुभम सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे

अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुम काबू आप हाथ दे मोह बचाओ सुखी बसै मोर ऊपर बारा सेवक सिख सबाई करतारा मोर अच्छा नि कर दे करिया सब बैरन को आसन घड़िया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम हचाट कोई अपना ध्यान जो मर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारी तारिया है चौन चुन सत्र हमारी मारिया है आप हाथ दे मुझे बरिया है मरण काल का त्रासन मरिया है हमारी पच्छा श्री अस तुझ जो कर हो रचा राख ले हो मह रखन हारी साहिब सन सहाय प्यारी दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो परिचा तर दस कुंता काल पाए ब्रह्म ममतराऊ काल पाए शिव जी अवतराऊ काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तुमासा जम काल जोगी सब कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जमन काल सब लोक सवार आओ नमस्कार हता हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैतु जच्छन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसी को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकों को सब गुरु सुख दियो सत्रन को पाल मोह बंद कियो कड़ कड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत है चीटी ते कुंचरे असूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछाना कड़ कड़ के पढ़ पढ़ की जानाई जबद कर करा करतारा प्रजा धर तब देह पारा

Salve Jacopo, no papo de vida. ताको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कच भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध जिती वर्णत पिन पिन तो हे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केहे बिद सजाव प्रथम संसारा।

करती रहे। ओ जो जाकि एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत 17 सहस पुण जय अर्ध सहस पुण 3 कह जय भाद्रव सुदी अष्टमी 12 तीर्थ द्रव ग्रंथ 17 सवैया।

अमृत शास्त्र बेत सबाई बहुपेद कह हम एक न जाने से अस्पान कृपा तुम्हारी करूं मैं न कहूं सब तो है बखाने दोहरा।

मन धन सब सौंप गुर को हुक्म मनियो पाईए। हुक्म मनियो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी कहना सुनो संतो कथियो कथ कहानी ए।

जुगह जुग निराली। ज्यो तू चलाए हैं तो चल स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जेव तू चलाए हैं तवै चला, जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जिन नाम लाए हैं।

मनो क्यों सारिये उड़दाता जे अगन में आहार पहुंचावे ओसनु केहो पो न सकी जिसनु अपनी लुलावे अपनी लुया पे लाए गुरमुख सदा संभालिए कह नानक ए उड़दाता सो क्यों मनो विसारिये जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया माया अग्न सब इक्को जेही करता खेल रचाया जां तिस भाणा तां जम्या परवार भला पाया

सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कृपा करे ता सहायकार कराए से। सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म बनाए से, हुक्म न हो मैं प्रमाणता खसमें का महल पाए से। खसमें पावे सो करे मनु चिंदे सो फल पाए से, तां दरगह पैंदा जाए से।

आपे पांडे से दुनिया पे पूर्ण दे एक ने दुश्मनी एक चलरन चढ़े एक ने हाली पे समन एक

0: शुद्ध जगो जगो टाल सतगुरु धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का कोटान कोट शुक्रिया जिन्होंने अपार मेहर करके अमृत वेले पावन पवित्र हजूरी अंदर शब्द कीर्तन नाल जुड़ करके सत्संग दे लाहे बख्शे गरीब नवाज सबदा पढ़िया सुनिया लिखे लवन गुरु चरणन निबण आवे आसरण करी लड़ीवार गुरु शब्द विचार ज्ञानी दर्शन से जी पासों वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहेगुरु जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी ज्यों पावै त्यों राख लै हम शरण प्रभाए राम राजे हम भूल बिगाड़ा दिन सो रात

सेवी सच एको का साधना का दो इनको फिर भी कार को जोड़ी सेवा को प्रसाद हरि सच की सच अनेको सेवी सच